0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनते पे हो अपने दिलानी वाज
7: 97.1
8: This is a public service announcement.
9: The station
10: that plays
11: foot tapping music.
7: Hazza 97.1 FM.
2: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM, आई लव इट.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर, 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM.

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
7: 97.1

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर। फजान 97.1 FM, आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर, या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

Better. The radio station for people who love music.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
9: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: लासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच सिनेंटनडेल NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए लासा ट्यूशन सेंटर 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM.

0: आएंगे, लेकिन हम अपनी चीजों को मैनेज कर लेंगे। नेगेटिविटी की तरफ नेगेटिविटी की तरफ थोड़ा सा तेज जाएंगे, आप पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा आहिस्ता जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग जब आपके माइंड में बैठ जाती है ना, तो सबसे पहले आपकी राहें खुलती हैं, आपको कामयाबी नजर आना शुरू होती है, आपको अपनी मंजिल मकसूद नजर आना शुरू होती है, आपको पता चलता है कि अब आप आगे की दिशा क्या है आपकी, आपने किस सिमत में रवाना होना है, आपने किस सिमत में जाना है, आपने किन लोगों से सहमत होना है, किन लोगों को आपने रिजेक्ट करना है, किन लोगों को आपने छानी लगानी है, प्योरीफाई करना है अपनी लाइफ में से। तो ये सारी चीज़ें आपकी कामयाबी के साथ कहीं ना कहीं मैच करती हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि मैच करने के साथ साथ जो चीज़ें आप में से निकल रही हैं वो आपको नुकसान दे रही हैं, तो वो वक्ती लॉस है, उसको होने दें। कुछ लोग अक्सर कहते हैं ना कि यार अगर ये मैंने कर लिया तो मुझे इतना लॉस होगा, उसको होने दें। लेकिन आप हो सकता है उसका जो लॉन्ग टर्म फायदा वो ना देख पा रहे हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव थिंकिंग है, या आपकी पर्सनैलिटी पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो इसका ये मतलब है कि ऊपर वाला आपकी सिमत देख चुका है, उसने आपकी दिशा डिसाइड कर ली है। तो बेहतर है जब ऊपर वाला डिसाइड कर ले कोई चीज़, तो फिर उस दिशा को पकड़िए, और फिर जब आप पॉजिटिव तरीके से मेहनत करना शुरू करेंगे, पॉजिटिव तरीके से अपने आप को एनर्जाइज करना शुरू करेंगे, तब आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा, तब आपको इस चीज़ का पता भी चल जाएगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं, जितने भी स्पेशल लोग हैं, जैसा कि बिल गेट्स की आज हमने बात की, कल हमारे पास मिस्टर हॉवर्ड थे जो स्टारबक्स कंपनी के फॉर्मर सीईओ हैं, इसके अलावा काफ़ी पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमारे साथ रहती हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उनकी पॉजिटिव थिंकिंग, उनकी अनगिनत मेहनत। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस एज में जाके वो कामयाब हुए, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि वो कामयाब हुए। दुनिया देखती है, दुनिया सुनती है, और उसके साथ हम जब ये कोशिश करते हैं कि हम अपने लोगों को बता सकें या मोटिवेट कर सकें।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: प्लानिंग अ वेडिंग, रिसेप्शन और स्पेशल सेलिब्रेशन? डिस्कवर एक्सेलसियर नवाब, नॉटिंघम्स ब्रांड न्यू रेनोवेटेड बैंक्वेटिंग वेन्यू। A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
3: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
2: Fully air-conditioned with modern kitchen facilities. A spacious foyer reception area located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
3: Excelsior Nawab, where your special moments become unforgettable.
4: Oye, khushiyan manao, pangde pao, pangde pao, pangde pao,
5: pangde pao. Aaj to bahut khush lag rahe hain, khair to hai?
4: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
5: ओहो, मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
4: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
5: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
4: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
5: चलें, उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
4: हाँ जी, क्यों नहीं, नॉटिंघम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंघम।
5: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
4: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
6: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।
4: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

जी तो लिसनर्स वेलकम बैक रेडियो फिजा। आपका मेजबान आसिफ खान एक बार फिर आपके साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग नॉटिंघम जी, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग नॉटिंघम में आपको दिल के अता कराएंगे, उसे खुश आमदेद कहते हुए, वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए उन समातों का जिन्होंने इस वक्त मुझे ट्यून किया, यानी एक सेगमेंट के बाद। और सेगमेंट था हमारा कि आज का हमारा फिजा आइडिया क्या है। और फिजा आइडिया में आपने सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज देखी कि मुझे जो फाइव वेज लगे उनमें से दो तरीके मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक जो है जो वे नंबर फर्स्ट था कि आपने सबसे पहले अपना डे प्लान करना है, और उसके बाद लास्ट वाला था जो कि कभी आपने अपने आप को पावरलेस नहीं समझना। बाकी जनाब आप देख सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि ये जो आइडियाज हमारे पास हैं, ये जो आज का जो टॉपिक है जिससे हम रिलेट हैं या हम लेके चल रहे हैं कि दिन को इस तरह ना देखो कि तुमने क्या पाया, बल्कि ये सोचो कि तुमने क्या बोया। अक्सर हम ये लोग ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि आज हमारे पास कैश कितनी कलेक्ट हुई है, आज हमारे पास अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, आज मैंने नई गाड़ी ली, आज मैंने नई गाड़ी बुक की, आज मैंने मॉर्गेज किया, आज मैंने ग्रॉसरी की, ये हर चीज़ आपने देखनी। लेकिन एक डिफरेंट एंगल से सोचिए कि अगर आप ये सोचें कि आपने इसके हवाले से कम्युनिटी को या अपने बच्चों को या लोगों को क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या फ़ायदा दिया, तो बेसिकली दिस इज़ द थिंग कि आपको पता चल जाएगा कि आप आज क्या बो रहे हैं। अगर आपने स्माइल पास की, सब लोगों से हंस के बात की, अपने दिन को एंजॉय किया, अपने दिन को स्टार्ट करने से पहले ही खूबसूरत बना दिया, तो फिर सामीन ये आपने बोया है। अब रिग्रेट करें इस चीज़ को या भूल जाएं कि आप क्या पाने जा रहे हैं या आपने क्या पाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या बो रहे हैं, आप किस तरह के लोग डिवेलप कर रहे हैं सोसाइटी में। और जब लोग डिवेलप होते हैं ना सोसाइटी में, डिवेलपमेंट की तरफ सोसाइटी चलती है, तो सबसे जो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है वो आपके इन्वायरमेंट पर होता है। इन्वायरमेंट का कामयाब होना बेहद ज़रूरी है जनाब। कल ये हमारा टॉपिक रहेगा और डेफिनेटली रहेगा कि जनाब इन्वायरमेंट कैसे कामयाब होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा विशेष टिप्पणी, बहुत ज़्यादा राय, बहुत ज़्यादा फलसफी बनना नहीं चाहता। इन्जॉय कीजिए कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स जो मेरे पास हमेशा मौजूद रहते हैं आप लोगों के लिए। सुनिए ये ट्रैक्स कुछ समय के लिए, इन ट्रैक्स के उस पार एक से दो मिनट मेरी आपसे गपशप रहेगी। आप लोगों के जो जितने भी मैसेजेस हैं वो भी शामिल हुए, साथ साथ पढ़ भी रहा हूं, लेकिन आपसे गुजारिश है जब आप मैसेज करें तो अपना पोस्टल कोड और अपना नेम लाजमी बताया कीजिए ताकि मैं अनाउंस कर सकूं। अब मेरे पास मैसेजेस आए हैं, मैं पढ़ नहीं सका या मैं उनको बता नहीं पा रहा आपको। मेन रीज़न ये है कि आप अपना नाम मैंशन नहीं करते, आप लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। सो स्टे ट्यून विद फिजा 97.1 FM डैब, इंजॉय कीजिए कुछ खूबसूरत से ट्रैक्स। ट्रैक्स के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात, होस्ट विल बी राइट बैक।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: तुसी सुनदे पे हो, सुनदे पे हो अपने दिलानी आवाज, दिलानी आवाज
7: 97.1।

Assalamu alaikum, namaste, satsriyakar, and a very good morning to all my listeners who are listening Radio Faza 97.1 FM right now. Dear listeners, I am your host Zainab Fatma. Welcome to you all to your favorite show, The Tiwa Dialogue. आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM, जहां मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जी तो लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलेंगे हम और आप मिलकर एक साथ अब से लेकर ठीक दो घंटे तक, यानी अब से लेकर ठीक दो घंटे तक हम और आप रहेंगे साथ साथ, मिलकर बनाएंगे आपके आज के इस दिन को, इस सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत और भी ज्यादा यादगार। तो लिसनर्स, इंतजार किस बात का है? अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस शो में शामिल हो जाएं, तो मैं आपको तरीका बताती चलती हूँ। तरीका बहुत ही है सिंपल, बहुत ही है आसान। करना आपने कुछ यूं है कि 01157100971, जी हाँ लिसनर्स, ये है हमारे स्टूडियो का लाइव नंबर। सो आप इस नंबर के जरिए से हमसे जुड़ सकते हैं, अपना खूबसूरत सा नाम, कोई प्यारा पैगाम या जो कुछ भी आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए कोई एडवाइस या फिर आप अपने पर्सनल थॉट्स, ओपिनियंस किसी से भी शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं। आप हमें 01157100971 पर कुछ भी भेज सकते हैं। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा और मैं उसको अपने शो में लाजमी शामिल करूंगी।

इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन को बआसानी अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक, तो लिसनर आप सोच रहे होंगे कि एप्लीकेशन को किस तरह से इंस्टॉल करना है, सो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, इजी सा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। करना आपने कुछ यूँ है कि जाना है अपने फ़ोन के एप्पल स्टोर या फिर गूगल स्टोर पर। वहां जाकर आपने सर्च करना है रेडियो फजा 97.1 FM और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स एक पर्पल कलर का आइकन आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, यही है हमारे रेडियो फजा 97.1 FM की लाइव एप्लीकेशन। सो जल्दी से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। जी तो लिसनर्स, अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हैं और चाहते हैं साथ ही साथ अपने मूड को मजीद इन्हेंस करना या फिर कुछ रिफ्रेशिंग सा सुनना, सो आप फजा डैप के थ्रू भी हमें सुन सकते हैं। ये तो थे वो सब तरीके जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि कनेक्शंस हमेशा वही पायदार होते हैं, यानी कि जो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज हो, तो इट डजेंट मैटर कि आप उसके साथ इन रियल लाइफ में मौजूद हो या नहीं। वो कहा जाता है ना कि फासले हमेशा दिलों में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके दिल किसी से मिलता हो तो भले ही वो इंसान, वो शख्स आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो, आपको कभी भी डिस्टेंस फील नहीं होगा। आपको हमेशा वो अपने आस पास इर्द गिर्द कहीं ना कहीं महसूस होते रहेंगे। जी तो लिसनर्स, मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा इमोशनली कनेक्शन कुछ इसी तरह से हो कि अगरचे हम लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हैं, लेकिन इमोशनली तौर पर एक दूसरे के साथ बाउंड हों। सो इसी परंपरा को लेकर चलते हुए, जैसा कि मैं अपने हर शो में कहती हूँ उन तमाम तर लिसनर्स से जो लोग ड्राइव करते करते मुझे सुन रहे हैं, कि बी सेफ, बी केयरफुल, क्योंकि लाइफ इज़ वेरी प्रिकॉशियस और यू नेवर नो नेक्स्ट मोमेंट में क्या हो जाए। सो थोड़ा एहतियात करें जब भी आप ड्राइव कर रहे हों, अपना मेन फोकस ड्राइविंग पर रखें और इर्द गिर्द की चीज़ों को, इर्द गिर्द की बातों को, जितनी भी चीज़ें होती हैं, बाज़ूकात होता है कि लाइफ में कुछ हर्डल्स चल रही होती हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज चल रही होती हैं या बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं, तो आप उन सब कन्फ्यूजन्स को अपने माइंड से ज़रा निकाल कर साइड पर कर दें और आपका पूरा ध्यान किस चीज़ पर होना चाहिए, आपकी ड्राइविंग पर। जी तो लिसनर्स, अगर आपका ये छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी संवार सकता है, सो आपको ज़रूर एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ये सोचकर ड्राइव करें कि आपके साथ आपके अपनों, आपके प्यारों की ज़िंदगियां जुड़ी हुई हैं, तो अगर आप एक रॉन्ग स्टेप उठाएंगे तो वो सभी अफेक्ट होंगे। बाज़ूकात ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी के चक्कर में कोई ना कोई ऐसी गलती कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं जो बड़े बड़े हादसात का मौजब बनता है। सो इन हादसात से बचिए, खुद का भी ख्याल रखिए और अपने प्यारों का भी सोचिए। सो बी सेफ एंड बी केयरफुल। जी तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे और अभी तक आपने अपने दिन का आगाज कर लिया होगा, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी सब लोग अपने ऑफिसेस की तरफ रवा दवा होंगे, या अगर कोई रवा दवा नहीं होगा तो इस वक्त तक वो अपने ऑफिस पहुंच चुका होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इस वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ रवा दवा होंगे और पीछे बच जाती हैं हमारी प्यारी फीमेल्स यानी कि हाउस वाइफ्स। तो अगर देखा जाए तो हमारी जो जितनी भी फीमेल्स हैं वो भी अब तक अपने घर में काम काज स्टार्ट कर चुकी होंगी, यानी कि घर की क्लीनिंग कर चुकी होंगी, डस्टिंग कर चुकी होंगी और इसी तरह या फिर इसी असना में लगी हुई होंगी। सो आप सभी को ये कहूँगी कि आइए मिलकर रेडियो फजा 97.1 FM के साथ अपने इस दिन को, इस सुबह को और भी ज़्यादा खूबसूरत और यादगार बनाइए।

सो तो लिसनर्स, आज का हमारा कोट कुछ यूं है, यू कैन नॉट कॉम द स्टॉर्म सो स्टॉप ट्राइंग, व्हाट यू कैन डू इज कॉम योरसेल्फ, द स्टॉर्म विल पास एंड व्हेन इट डज यू विल रियलाइज दैट यू ग्रो रूट्स नॉट जस्ट ब्रांचेस। आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर सोच रहे होंगे कि ये कोट ऑफ द डे कुछ डिफिकल्ट सा है, कुछ मुश्किल सा है, तो चलिए आपके लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ और आपको आसान लफ्जों में समझाती हूँ कि हमारे आज के कोट ऑफ द डे का मौकफ यानी कि मीनिंग क्या है। सो बेसिकली हमारे आज के कोट ऑफ द डे का मीनिंग कुछ यूं है कि आप तूफान को रोक नहीं सकते, इसीलिए कोशिश करना छोड़ दे। बाज़ूकात ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स, डिफ़िकल्टीज और ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं जिनको हम अब कंट्रोल नहीं कर सकते। होता है कि लाइफ है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है,

होता है ना कि समटाइम्स हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जो कि हमारी खुद की हुई नहीं होती, लेकिन चूंकि लाइफ है तो लाइफ कम्स विद चैलेंजेस, सो होता ये है कि हम उनको रोक नहीं सकते, हम आते हुए उन तमाम तर चैलेंजेस को रोक नहीं सकते, बट द थिंग इज हम जो कर सकते हैं वो ये कि हम अपने आप को पुरसकून और काम रख सकते हैं, यानी कि सिचुएशन जैसी मर्जी हो, हालात जैसे मर्जी हो, द बेस्ट थिंग इज डेट वी कैन डू इज कि हम काम कर सकते हैं अपने आप को, यानी कि यू फील रिलैक्स, यानी कि हमें ये सोच रखनी चाहिए माइंड में कि चाहे हालात जैसे मर्जी हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग। और अगर आप काम रहोगे, चिल रहोगे, रिलैक्स रहोगे, तो आप फील करोगे कि जो आपकी लाइफ में अचानक से हर्डल, चैलेंजेस या फिर डिफ़िकल्टीज आई थी, वो वक्त के साथ साथ खुद ब खुद गुजर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और उन हर्डल्स, डिफ़िकल्टीज के जाने के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि आपने उसको कितने अच्छे से हैंडल किया। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ होगी कि आपने अपनी ब्रांचेस को नहीं बल्कि अपनी रूट्स को मजबूत रखा है। सो बेसिकली हमारे आज का कोट ऑफ द डे का मीनिंग मौकफ ये कहता है कि जब भी लाइफ में कभी हमारी ऐसी सिचुएशंस आ जाएं जहां हमें ऐसा महसूस हो कि अब हम कुछ नहीं कर सकते या चीज़ें आउट ऑफ द कंट्रोल हो चुकी हैं या फिर वी कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग, सो द फर्स्ट थिंग वी डू इज वी कैन कॉम अवरसेल्फ सो डैट इसके चलते चलते हम क्या करेंगे, हम उन मुश्किलात को हल कर लेंगे, लाइफ के चैलेंजेस को इजीली ओवरकम कर लेंगे।

अब अगर इसके बरक्स हम उन दूसरे लोगों की बात करें कि जिनकी लाइफ में अगर चैलेंजेस आ जाते हैं, डिफ़िकल्टीज आ जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, पैनिक होते हैं, तो अगरचे वो डिफ़िकल्टी, वो सिचुएशन टेम्प्रेरी होती है, कुछ टाइम बाद उसने ख़त्म हो जाना होता है, चले जाना होता है, लेकिन अगर आप पैनिक होगे, पैनिक क्रिएट करोगे या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करोगे, तो तब भी आपको वो हर्डल हैंडल करनी पड़ेगी, लेकिन तब आपके लिए वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसको ईजी होकर, चिल होकर, रिलैक्स होकर हैंडल करोगे, तो यूर लर्न लाइफ के यू फील कि आपने उस डिफ़िकल्टी को, उस चैलेंज को बहुत अच्छे से हैंडल किया, और साथ ही साथ आपको ये चीज़ भी रियलाइज़ होगी कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी मजबूत है। सो आज के इस कोट के ऑफ द डे को मुझे लगता है कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट सा है, काफ़ी इंस्पायरिंग सा है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे तमाम तर लिसनर्स को भी आज का हमारा कोट ऑफ द डे काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी मेस्मराइजिंग लगा होगा। सो बेसिकली आप सभी से मैं इतना ही कहूँगी कि मुश्किलात आपकी, मेरे, हम सबकी ज़िंदगी में आती हैं। सो हमने क्या करना है आज के कोट ऑफ द डे से, हमने ये सीखना है कि हमने उन मुश्किलात के आगे घबराना नहीं है, हमने अपना सेल्फ इस्टीम लो नहीं करना, बल्कि हमने ये सोचना है कि ये एक मुश्किल टाइम पीरियड है, ये गुजर जाएगा, और ये चैलेंज, ये डिफ़िकल्टी हम कर सकते हैं, और दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो कोई इंसान ना कर सकता हो। वैसे भी वो एक बहुत ही फेमस लाइन है कि कहा जाता है, फेथ एंड रेजिलेंस आर अबाउट ट्रस्टिंग द प्रोसेस व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड इट। समटाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती, लेकिन जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड एवरीथिंग विल बी ओके ऑन द राइट टाइम।

See, so listeners, always remember the best thing comes with time. So, आप चीज़ों को टाइम दें और कोशिश करें कि आज से अगर आपकी लाइफ में भी कोई डिफिकल्टी आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई चैलेंज आता है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको कामली हैंडल करेंगे, ना कि आप उस चीज़ को स्ट्रेस्ड होकर, पैनिक होकर या फिर ओवर थिंकिंग करके हैंडल करें. सो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये कोट ऑफ द डे बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है. लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है हमारे शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. जी तो लिसनर्स, कमर्शियल ब्रेक के उस पार आपसे होगी फिर से एक बार मुलाकात. सो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बंधे रहिए. किस तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे उसका भी आपको एक बार फिर से बताती चलती हूँ. radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू आप हमें लाइव ट्यून कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे, अपडेट रहेंगे. और 01157100971 इस नंबर के थ्रू से आप हमसे अपने ख्यालात, अपना फीडबैक और अपने जज्बात शेयर कर सकते हैं. सो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे संग, यानी रेडियो फजा 97.1 FM के संग. सो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे कमर्शियल ब्रेक के उस पार. तब तक के लिए

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7-7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। वेलकम करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द डीवा डायलॉग में।

जी तो लिसनर्स, काफ़ी बातचीत कर ली हमने मोटिवेशन के बारे में, इंस्पिरेशन के बारे में, तो अब बात करते हैं कुछ किचन के बारे में। जी तो लिसनर्स, एक खूबसूरत दिन की, एक अच्छे दिन की शुरुआत तभी होती है कि जब आप कुछ मज़ेदार सा, डिलिशियस सा रेस्टोरेंट स्टाइल खाना खाएं। वो कहा जाता है ना कि वी ईट विद अवर आइज फर्स्ट, तो जब तक खाना लजीज हो, खूबसूरत दिखे ना, तब तक बात तो नहीं बनती। सो इसीलिए आज मैं अपने तमाम द लिसनर्स के लिए लाई हूँ द किचन फैक्ट्री में इसी तरह की कुछ मज़े मज़े की रेसिपीज, जो कि आपके मूड को मज़ीद इन्हेंस कर देगी, दिन को अच्छा बना देगी और आपके घर वालों के मूड को भी खुशगवार बना देगी। जी तो लिसनर्स, आज के द फ्लेवर फैक्ट्री में हम बनाएंगे होटल जैसा खाना, वो भी घर पर और घरेलू इंग्रेडिएंट्स के साथ। यानी कि आज आपके घर वाले होने वाले हैं खुश, क्योंकि लाई हूँ मैं आप सभी के लिए कुछ इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज। जैसा कि इन रेसिपीज़ को बनाना जितना इजी है, जितना आसान है, उसी तरह इनका जायका भी उतना ही ज़्यादा मज़ेदार है, उतना ही ज़्यादा फ्लेवरफुल है। तो आप फौरी तौर पर अपनी कॉपी पेंसिल उठा लीजिए, अपनी डायरी रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ आज की हमारे मेन कोर्स की मज़ेदार से इन्ग्रीडियंट्स। लेकिन लिसनर्स, में सोच रही थी कि काफ़ी देर हो चुकी है, हमने काफ़ी गपशप की, लेकिन अभी तक हमने कोई भी म्यूज़िकल ट्रैक नहीं सुना। सो एक मज़ेदार सा ट्रैक शो में शामिल किया जाए ताकि आप लोग कहीं मेरी आवाज़ सुन सुनकर बोर ना हो जाएं। सो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक मज़ेदार सा, खूबसूरत सा ट्रैक शो में शामिल करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरे तमाम तर लिसनर्स को अच्छा लगेगा। पर्सनली ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सो चलते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक की जानिब और फिर यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे।

जी तो लिसनर्स, हम बात कर रहे थे मज़ेदार से खानों की, पकवान की, लेकिन इसी गुफ्तगू में, इसी इसना में उम्मीद करती हूँ आप सभी ने हमारा ये म्यूज़िकल ट्रैक ज़रूर इन्जॉय किया होगा। पर्सनली ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं जब भी अगर कभी मुझे अपना मूड थोड़ा सा लाइटन अप करना हो या फिर थोड़ी काम मेलोडी लिरिक्स सुनने हों तो मैं ये गाना ज़रूर सुनती हूँ। आई थिंक आप सभी को भी ये गाना तभी सुनना चाहिए जब आपको अपना मूड थोड़ा सा इन्हेंस करना हो, प्लस आप ज़्यादा शोरगुल नहीं चाहते हों, आप चाहते हों कि म्यूज़िक कुछ ऐसा हो जो थोड़ा लाइट सा हो, काम सा हो, तो आप इस तरह के गाने सुन सकते हैं। जी तो लिसनर, जैसा कि हम रेसिपी की जाने बढ़ रहे थे, लेकिन अभी वक्त हुआ चलता है हमारे शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए, बंधे रहिए हमारे संग, यानी रेडियो फजा 97.1 एफएम के संग। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। वेलकम करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द डीवा डायलॉग में। जी तो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM, जहाँ मिलती है आपको इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। सो जी लिसनर्स, इस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट के पैटर्न को लेकर चलेंगे हम और आप अब से लेकर ठीक 2 घंटे तक, यानी अभी तक आपका और मेरा साथ 1 घंटे का कंप्लीट हो चुका है। सो अब रह गए हैं आपको और मुझे साथ में 1 घंटा। तो ठीक इसी तरह जिस तरह से हमने पहले इस घंटे को खूबसूरत यादगार बनाया, आने वाले इस घंटे को भी इसी तरह से खूबसूरत बनाएंगे। जी तो लिसनर्स, हम बात कर रहे थे मज़ेदार से आज के अपने मेन कोर्स के बारे में, जिसका तमाम तर फीमेल्स को रहता है बेसब्री से इंतज़ार। क्योंकि खाना पकाना भी एक फुल टाइम ड्यूटी से कम नहीं होता। डेली बेसिस पे ये सिलेक्ट करना कि आज क्या पकाया जाए, ये भी अगर देखा जाए तो काफ़ी बड़ा टास्क होता है। सो आज की जो हमारी मेन कोर्स की डिश है, इट्स अ रियली डिफरेंट, इट्स रियली यूनिक एंड आई थिंक कि आप सभी को ये काफ़ी अच्छी लगेगी, खास तौर पर आपके घर वालों को। तो जी हम आज बनाने जा रहे हैं क्रीमी मशरूम एंड हर्ब चिकन। यकीनन नाम से ही आपको ये काफ़ी दिलचस्प लग रहा होगा। सो बेसिकली ये एक वेस्टर्न स्टाइल डिश है जो ठीक 20 मिनट में फटाफट से बन जाएगी और आपको बिल्कुल भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं पुट करने पड़ेंगे, बट स्टिल इट्स रियली डिलीशियस। लिसनर्स चलिए चलते हैं इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की जानिब। सो इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं, उस पर सबसे पहले द मेन इंग्रेडिएंट चिकन ब्रेस्ट आपने ले लेना है 500 ग्राम। बेस्ट ये है कि आप बोनलेस चिकन यूज़ करें, लेकिन अगर आप दूसरा चिकन भी यूज़ करते हैं तब भी इट्स अप टू यू, लेकिन आई प्रेफर कि आप बोनलेस चिकन यूज़ करें। साथ ही साथ आपको चाहिए मशरूम 1 कप बारीक स्लाइस में कटे हुए। और साथ चाहिए आपको होगा 1 अदद कुकिंग क्रीम का 1 कप, या फिर आप डेली यूज कर सकते हैं या फिर दूसरी होम बेस्ड क्रीम भी आप यूज कर सकते हैं। तो लिसनर्स, हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है लहसुन, यानी कि गार्लिक। आपको चाहिए पूरा 1 चम्मच बारीक कटा हुआ। साथ ही साथ मक्खन 2 चम्मच, ऑलिव ऑयल, कुकिंग ऑयल या फिर जो सा भी ऑयल आप यूज करते हैं 1 चम्मच। और अगर बात की जाए इस रेसिपी में जान डालने की, यानी कि हर्ब्स की, सो आपको चाहिए मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरिगैनो 1 चम्मच, काली मिर्च आपको चाहिए 1 चम्मच बिल्कुल फ्रेश क्रश्ड हुई हुई, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट नमक, हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत। जितना नमक आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं आप अपने टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा लिसनर्स, मैंने एक चीज़ नोट की है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनको तेज़ नमक पसंद होता है, तो वो जब भी खाना बनाते हैं, कुछ भी पकाते हैं, तो वो खाने में नमक को तेज़ रखते हैं। और इसके बरक्स अगर हम देखें तो दूसरी जानब बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बहुत कम नमक खाते हैं। सो इसीलिए मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप जो भी रेसिपी सुने, जो भी रेसिपी देखें, सो आप रेसिपी को पूरा तरीके से फॉलो किया करें, लेकिन आप नमक हमेशा हस्बे ज़रूरत और हस्बे जायका इस्तेमाल किया करें, क्योंकि नमक आपके टेस्ट बर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा तभी आपको वो रेसिपी डिलीशियस लगेगी। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि इस रेसिपी में तो बिल्कुल नमक ही नमक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कम नमक बताती हूँ तो दूसरी जानब के लोग कहें कि ओह इस खाने का जायका कितना बेकार है क्योंकि इसमें नमक कम है। वैसे अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें तो मुझे खानों में नमक तेज़ पसंद है। अच्छा मैं जब भी कुछ भी कुक करती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ घर में, तो मैं हमेशा तेज़ नमक रखती हूँ, लेकिन हमेशा मेरी मामा कहती हैं कि खाने में नमक थोड़ा कम डाला करो, और मेरी मामा कम नमक प्रेफर करती हैं। सो इसी तरह होता है ना कि हर एक इंसान का, लोगों का डिफरेंट जाविया होता है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सो ये तो थे हमारे इंग्रेडिएंट्स एंड आई थिंक तमाम तर लेडीज, फीमेल्स या जो जो भी इस वक्त हमें सुन रहा है, देख रहा है, और वो तमाम तर मर्द हजरात भी, क्योंकि ये रेसिपी इतनी इजी है तो ऐसा नहीं है कि जस्ट फीमेल ही इसको बना सकती हैं, आप भी बना सकते हैं।
सो आई थिंक आपने अभी तक इंग्रेडिएंट नोट डाउन कर लिए होंगे, लेकिन अगर कुछ मिस हो गया है तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ फौरन फौरन से।

जी तो लिस्ट इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले चिकन ब्रेस्ट, सेकेंडली मशरूम, थर्डली कुकिंग क्रीम एंड देन लहसुन गार्लिक, मक्खन, ऑलिव ऑयल, मिक्स्ड हर्ब्स, ऑरिगैनो, काली मिर्च और साथ ही साथ नमक। तो मैंने उन तमाम द लिसनर्स के लिए जिनके लिए कि जो कोई एक आधी चीज़ बीच से मिस हो गई हो, तो मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया है। एंड आई थिंक अब आप सभी ने सब इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लिए होंगे और कुछ भी मिस नहीं हुआ होगा। जी तो लिसनर्स, अब इस मज़ेदार सी रेसिपी के प्रोसीजर यानी कि तरीकाकार की जानिब बढ़ते हैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि काफ़ी गपशप हो रही है, काफ़ी बातचीत हो रही है, तो थोड़ा सा म्यूजिक मस्ती भी होना चाहिए। सो शामिल करते हैं शो में एक मज़ेदार सा ट्रैक। सो आप ये ट्रैक इंजॉय करें और ट्रैक से वापसी पर फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से हम इस रेसिपी को झटपट बना सकते हैं।

जी तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस ट्रैक को ज़रूर इंजॉय किया होगा। पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार सा था। चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। और जैसा कि इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर लिए थे, तो अब हम उसके मेथड की जानिब बढ़ते हैं। बताती हूँ कि आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप्स को फॉलो कर मज़ेदार से ये रेसिपी फौरी तौर पर बना सकते हैं। तो करना आपने कुछ यूँ है, हमारा स्टेप नंबर वन है कि आपने वो जो चिकन पीसेस जो आपने ले लिए थे बोनलेस, उन पर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च लगाकर रख देना है। फिर आपने क्या करना है, आपने एक पैन में ऑलिव ऑयल और एक चम्मच मक्खन, इसको आपने अच्छे से गर्म कर लेना है। अब आपने वो जो चिकन जिसके ऊपर आपने नमक और काली मिर्च लगा कर रखा था, उसे आप पैन में दोनों साइड से अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लें, यहाँ तक कि आपका चिकन बिल्कुल ब्राउन हो जाए। जैसे आपको लगे कि आपका चिकन बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, आप समझ जाएं कि आपका चिकन अब अच्छे से पक गया है। सो आपने क्या करना है, एक प्लेट में उसे निकाल कर साइड पर रख लेना है। अच्छा, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि आपने उसी पैन में जो बचा हुआ मक्खन और जो थोड़ा सा आपने लहसुन लिया था, उसको अच्छी तरह से डाल दें। जब आपको लगे कि जो लहसुन का अरोमा है, उसकी खुशबू है, वो इर्द गिर्द फैल रही है, तो आप समझ जाएं कि वक्त आ गया है कि मशरूम्स को बीच में ऐड करना है। अब आपने क्या करना है कि आपने उन मशरूम्स को अच्छी तरह से कुक करना है 3 से 4 मिनट के लिए। आप उनको अच्छे से पकाएं, यहाँ तक कि वो अच्छे से कुक हो जाएं, ब्राउन हो जाएं। अब बारी आती है हमारे स्टेप नंबर 3 की, द क्रीमी सॉस की। सो स्टेप नंबर 1 में हमने चिकन को कुक किया और अपने स्टेप नंबर 2 में मशरूम्स को। अब आ जाती है बारी स्टेप नंबर 3 की, यानी कि क्रीमी सॉस बनाने की। सो अब हमने पैन में कुकिंग क्रीम जो हमने साइड पे रखी थी, या फिर डेरी क्रीम, या जो आप घर में यूज करते हैं नॉर्मल वो क्रीम, साथ ही साथ मिक्स्ड हर्ब्स, ओरिगैनो और साथ ही साथ काले नमक, इन तीनों चीजों को शामिल कर दें। अब आपने फ्लेम को बिल्कुल हल्का रखना है और इसको अच्छी तरह से कुक करना है। जब आपको लगे कि आपकी जो सॉस है वो हल्का सी गाढ़ी, यानी कि हल्की सी थिक हो गई है, तो आपने क्या करना है कि वो जो पका हुआ आपका चिकन है, उसको वापस से पैन में रख देना है और इसको 2 मिनट के लिए सॉस के अंदर आपने अच्छी तरह से पकाना है, यहाँ तक कि सॉस का जितना भी अरोमा है, टेस्ट है, वो सब आपके चिकन में भी ऐड हो जाए।

लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेसिपी मजीद प्रेजेंटेबल दिखे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर दें, थोड़ा सा ओरिगैनो शामिल कर दें और इस तरह से आप इसकी ओवरऑल लुक को मजीद इन्हेंस कर सकते हैं। जी तो लिसनर्स, देखा आपने कितने जल्दी से कितने फ़ौरन से हमारी ये रेसिपी तैयार हो गई। आपको बिल्कुल भी कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़े, कोई लंबी चौड़ी इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं थी और ना कोई ज़्यादा सारे स्टेप्स थे। बिल्कुल 10 से 20 मिनट में आई थिंक बिगिनर भी इस रेसिपी को बना सकता है। जी तो लिसनर्स, क्रीमी खाना खाने के बाद अब बारी आती है हमारी आज की ड्रिंक की। जैसा कि होता है ना कि जब भी हम कुछ ऐसा खाना खा लें जो थोड़ा सा हैवी हो, थोड़ा सा क्रीमी या थोड़ा सा थिक हो, उसके साथ साथ हमें फिर रिफ्रेशनेस की जरूरत होती है। सो आज हम बनाएंगे एक मजेदार सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक। अच्छा, इस रेसिपी को बहुत सारे लोग मिंट मार्गरीटा के नाम से भी जानते हैं और बहुत से लोग इसे मिंट लेमिनेट भी कहते हैं। सो आज हम क्या करेंगे, मिंट मार्गरीटा या फिर मिंट लेमिनेट, इन दोनों के मिक्सचर की एक मज़ेदार सी रिफ्रेशिंग एनर्जेटिक सी ड्रिंक बनाएंगे जो आपकी इस रेसिपी की हैवीनेस को थोड़ा सा कम कर देगी। तो लिसनर्स, पूरी तौर पर नो डाउन कर लीजिए क्योंकि मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। सो इस मज़ेदार सी ड्रिंक को बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें दरकार हैं, उसमें सबसे पहले फ्रेश पुदीना यानी कि मिंट लीव्स, साथ ही साथ हमें चाहिए लेमन जूस 3 बड़े चम्मच, शुगर या हनी। अगर आप हनी प्रेफर करते हैं तो आई थिंक इट्स द बेस्ट चॉइस क्योंकि हनी नेचुरल है, स्वीट भी है और इससे आपकी हेल्थ को बिल्कुल भी कोई अफेक्ट नहीं होगा। उसके बरस अगर आप दूसरी जानब देखें तो शुगर। अब शुगर क्या है कि शुगर आर्टिफिशियल है, शुगर डेंजरस है और हेल्थ इश्यूज भी क्रिएट कर सकती है। सो आई प्रेफर कि आप हनी ऐड करें। तीसरा जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके बिना तो रेसिपी बन ही नहीं सकती, वो है ठंडा पानी। ऑब्वियसली अगर आप पानी नहीं शामिल करेंगे तो ड्रिंक इस तरह से कम्प्लीट होगी। साथ ही साथ थोड़ा सा सोडा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आइस क्यूब्स, जो कि आपकी इस ड्रिंक को रिफ्रेशिंग बनाएगी, एनर्जेटिक बनाएगी। क्योंकि ड्रिंक कोई भी हो, जब तक वो कूल ठंडी ना हो तो फ्रेशनेस का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये तो थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। चलिए ज़रा इसको किस तरह से बनाना है उसकी जानी भी देखते हैं, लेकिन आई थिंक एक म्यूजिकल ब्रेक होना चाहिए। सो हम एक ट्रैक सुनते हैं और इस ट्रैक को सुनने के बाद फिर यहीं से कॉन्टिन्यू करेंगे।

जी तो लिसनर्स, आप सभी के लिए लगाया है ये मैंने मजेदार सा कोक स्टूडियो पाकिस्तानी सीजन 15 का सॉन्ग झोल। होप सो आप इसको लाइक करेंगे, जरूर पसंद करेंगे। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक।

0: सकते हैं। तो लिसनर्स, हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद हमने इसको स्टेन कर लेना है ताकि जितने भी पुदीने के लीव्स वगैरह हैं वो साइड पर हो जाएं, और हमारी मज़ेदार से ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक हो गई तैयार। सो जी, अभी वक्त हुआ चलता है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। कमर्शियल ब्रेक से वापसी पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे, तब तक के लिए चलते हैं।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
7: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
6: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
7: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
6: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
7: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
8: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
6: Park Foods, जो नाम है मायार का।
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
10: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
11: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
10: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
11: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
10: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
11: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
10: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
11: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
10: टेस्ट भी वाइब।

जी हाँ, वेलकम बैक वंस अगेन, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। वेलकम करती हूँ आप सभी को आपके फेवरेट शो द टीवार डायलॉग में। आप सुन रही हैं रेडियो फजा 97.1 FM, जहाँ मिलती है आपको इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एंटरटेनमेंट। जी तो लिसनर्स, इस इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट के डोज को बिल्कुल भी मिस मत करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, किस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं उसका तरीका भी आपको बताती हूँ। सो आप 01157100971 इस नंबर के ज़रिए से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं और साथ ही साथ आप हमसे अपने ख्यालात, जज्बात, आज के गोल ऑफ द डे क्या हैं आपके, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या करने वाले हैं और आपकी ज़िंदगी को लेके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं, आप वो सभी हमसे शेयर कर सकते हैं। मुझे हमेशा से आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है एंड आई एम ऑलवेज लविंग टू रीड ऑल दीज फीडबैक्स। जी तो लिसनर्स, इसके साथ साथ आप हमें radiofaza.com.uk की वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्यून कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन रेडियो फजा 97.1 FM को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका तरीका बहुत ही सिंपल सा है, आसान सा है। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और चाहते हैं साथ ही साथ आपको सुनने को कुछ खूबसूरत, कुछ दिलकश मिले, तो आप फजा डैप के थ्रू हमें ट्यून कर सकते हैं। ये वो सभी तरीके हैं जिनसे आप हमसे और हम आपसे जुड़ सकते हैं। सो जुड़े रहिए और अपने होने का एहसास दिलाते रहिए। वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपीज यानी कि आज का कुकिंग किचन बहुत अच्छा लगा होगा। पर्सनली मैंने सोचा कि डेली बेसिस पर हम वही बेसिक सी रेसिपीज़ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वही सालन, वही कढ़ाही, वही बिरयानी, वही चावल। तो लिसनर्स, मैंने सोचा कि आज क्यों ना ज़रा हट के ज़रा डिफरेंट कुछ अलग सा बनाया जाए। सो इसी के चलते मैंने सोचा कि हम आज ये रेसिपी बनाएं। वेल, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। अब ये तो आपका फीडबैक ही बताएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो दी लिसनर, जरूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और मुझसे अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। जी तो लिसनर, अभी वक्त हुआ चलता है हमारे शो के उस सेगमेंट का, यानी कि उस मोटिवेशनल, उस मेस्मराइजिंग, उस आइकॉनिक सेगमेंट का, जिसका मुझे, आपको, बल्कि हम सभी को रहता है बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि ना सिर्फ ये सेगमेंट हमारे दिन को अच्छा करता है बल्कि हमारी लाइफ में दीगर तरह की तब्दीलियाँ, दीगर तरह के चेंजेस को भी रोनुमा करता है। जी तो लिसनर्स, अगर हम बात करें एक ऐसी कंट्री की जहाँ वुमेन राइट्स सबसे पहले फीमेल्स को दिए गए, तो अगर मैं कहूँ कि उसमें नॉर्वे का नाम ना लिया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। जी तो लिसनर्स, आज के हमारे इस टीवार डायलॉग के आइकॉनिक सेगमेंट में, जिस इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल फीमेल की स्टोरी मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ, उनका ताल्लुक भी नॉर्वे से है। सो बेसिकली आज मैं जिनकी बात करने जा रही हूँ, ये एक ऐसी फीमेल है जिन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क की पॉलिटिक्स को बदला बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। वो कहा जाता है ना कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जी तो लिसनर्स, आज हम सुनेंगे ग्रो हार्लिन की खूबसूरत सी कहानी, खूबसूरत सी मोटिवेशनल स्टोरी, कि उन्होंने किस तरह से अपने चैलेंजेस को, अपने हर्डल्स को, अपनी डिफ़िकल्टीज को ओवरकम किया। जिस तरह से आज मैंने कोट ऑफ द डे में भी बात की थी कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस तो आते ही आते हैं, आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज भी आती ही आती हैं, लेकिन समझदार, अकलमंद और काम लोग क्या करते हैं कि वो उनका सब्र से सामना करते हैं। तो फिर क्या होता है कि कुछ वक्त बाद वो डिफ़िकल्टी तो चली जाती है, लेकिन उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो मेंटली और फिज़िकली किस हद तक स्टेबल हैं।
جی تو لسنرز، گرو ہارلم کی کہانی بھی کچھ اسی طرح کی ہے. انہوں نے نہ صرف خود کے لیے، دوسروں کے لیے، بلکہ دنیا کی تمام تر فیمیلز کے لیے ایک مثال قائم کی کہ کس طرح سے عورتیں اگر چاہیں تو خود پر محنت کر کے، خود پر یقین رکھ کر زندگی میں آگے بڑھ سکتی ہیں، دنیا کو دکھا سکتی ہیں کہ فیمیلز کسی سے کم نہیں. سو بیسیکلی گرو ہارلم 1939 میں ناروے کے ایک شہر اوسلو میں پیدا ہوئی. ان کے والد ایک ڈاکٹر تھے اور انہوں نے ہی گرو کے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا. یعنی کہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان کی پہلی درس کا اس کا گھر ہوتا ہے. سو بیسیکلی ان کے ایک فادر جو ہے وہ ایک ایسے ڈاکٹر تھے جن کے اندر انسانیت کا جذبہ تھا، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ تھا، اور یہی جذبہ، یہی پیشن، یہی اسپرٹ انہوں نے اپنی بیٹی میں ٹرانسفر کیا.

रॉ ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक हेल्थ की डिग्री ली। उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि वो एक ऐसी पॉलिटिक्स बनाएं जिसमें बच्चों और औरतों की सेहत बेहतर हो सके। यानी कि अगर आप देखें तो उनका पॉलिटिक्स पे आने का, पॉलिटिक्स को बदलने का या फिर पॉलिटिक्स को चेंज करने का मोटिव ना ही दौलत थी, ना ही शोहरत थी, ना ही फेम था, बल्कि खिदमत इंसानियत था। वो चाहती थी कि उनकी कंट्री के अंदर, उनके मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम तर बच्चे, तमाम तर औरतें जो बेसिक हकूक से महरूम हैं, उनको सेहत के अच्छे हकूक दिलवाए जाएं। और अपने इसी जज्बे को, अपने इसी स्पिरिट को मद्देनजर रखते हुए और साथ लेकर चलते चलते 1989 में सिर्फ 41 साल की उम्र में वो नॉर्वे की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। अगर इमेजिन किया जाए तो हाउ अमेजिंग। उस दौर में जहां पर ये वो दौर था, ये उस दौर की बात की जा रही है जहां पर फीमेल्स को उनके बेसिक राइट्स तक नहीं मिलते थे, लेकिन ग्रो हार्लेम ने ना सिर्फ अपनी अंथक मेहनत, कोशिश, लगन के तहत 41 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर की सीट संभाली। ये वो दौर था जहाँ पे उनकी कैबिनेट को पूरी दुनिया में वुमेन गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि उनकी आधे से ज़्यादा कैबिनेट में औरतें शामिल थी। उन्होंने वर्क प्लेस पर औरतों के हकूक, राइट्स और उसके साथ साथ बराबरी के लिए बहुत सारे लॉ पास करवाए। इसके साथ ही साथ उनका मेन फोकस, मेन मोटिव इसी चीज़ पर था कि चाहे पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो या फिर हो एजुकेशन, हर फील्ड या फिर हो हेल्थ, हर फील्ड में औरतों को आगे आने का मौका दिया जाए, औरतों के लिए सीट्स बनाई जाएं और औरतों को उनके बेसिक राइट्स दिए जाएं। अगर हम ग्रो हार्लेम के इंटरनेशनल सर्विसेज की बात करें तो उनकी खिदमात काबिले फरामोश नहीं है। उन्होंने काफ़ी कुछ किया इंसानियत के लिए, ना सिर्फ इंसानियत के लिए बल्कि औरतों के लिए। '83 में यूनाइटेड नेशंस ने इन्हें वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट का चेयरमैन बनाया, जो कि उनके लिए एक बहुत ही बड़ा एजाज़ था और तमाम तर औरतों के लिए भी एक फख्र या अलामत थी कि किस तरह से एक फीमेल, एक खातून जो उन्हें सपोर्ट कर रही है, इस इतनी बड़ी चेयर पर पहुंच गई। उन्हीं की एक रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर ने दुनिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि हम इस ज़मीन के मालिक नहीं बल्कि इस ज़मीन के रखवाले हैं। हमें चाहिए कि हम इस ज़मीन को संभाल कर रखें, इसका ख्याल रखें, इसका एहसास करें। और अपनी इसी अंतक मेहनत और कोशिश और लगन को मद्देनजर रखते हुए और साथ ही साथ चलते हुए बाद में वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो कि आज पूरी दुनिया में काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस जानी जाती है, समझी जाती है, की डायरेक्टर जनरल भी बनी। और दुनिया भर में उन्होंने बीमारियों के खिलाफ जिद्दोजहद की, लोगों को अवेयरनेस दी, आगाही दी, शऊर दिया कि किस तरह से बाज़ुकात हम क्या करते हैं कि नॉर्मल से सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और वो बाद में क्या होता है कि हमारे लिए बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है।

तो बेसिकली क्रो ने ये चीज़ साबित की कि एक लड़की अगर तालीम याफ्ता हो तो वो पूरी दुनिया को रास्ता दिखा सकती है, ना सिर्फ अपने मुल्क की पॉलिटिक्स को बदल सकती है बल्कि दीगर दूसरी जहां में भी जाकर कारकर्दगी कर सकती है। उनकी बायोपिक, उनका काम और उनकी सर्विसेज आज इंटरनेशनल हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। अगर आज भी आप हिस्ट्री में जाकर देखें और जहां पे बात होती है पॉलिटिक्स की, फीमेल्स की, फीमेल को सेहत के बेसिक हकूक्स प्रोवाइड करने की, तो वहीं ग्रो हार्लिंग की बात भी लाजमी होती है। तो बेसिकली ग्रो हार्लिन की कहानी हमें ये चीज़ सिखाती है, द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन हाउ वी ट्रीट आवर प्लैनेट एंड आवर सोसाइटी टुडे। जैसा कि अगर आज हम खुद अपनी सोसाइटी का, अपने इर्द गिर्द का, अपने माहौल का ख्याल नहीं रखेंगे, हम दीगर छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देंगे, उन पर फोकस नहीं करेंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, तो उसी तरह हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को अच्छा नहीं कर सकते, हम अपने फ्यूचर को अच्छा नहीं कर सकते। ये वो तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो डिपेंड करती हैं हमारे आज पर। सो अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो हमें अपने आज को अच्छा करना पड़ेगा। जी तो लिसनर्स, मुझे तो इस इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और अगर मैं पर्सनली एक खुलासा करूं या एक बात करूं कि मुझे, आपको, हम सबको इस स्टोरी से क्या एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, तो वो कुछ यूँ है। हमें ये चीज़ सीखनी चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा, चाहे वो हमारा पर्सनल प्रोफेशन हो या हो हमारा घर, हर तरफ को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। यानी कि हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं अपने माहौल से लेकर हर एक चीज़, चाहे हमारा माहौल है, सोसाइटी के बच्चे हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ को हमने मियाना रवि से लेकर चलना है, ध्यान रखना है, एहतियात करनी है और अपने असासाजात को संभाल कर रखना है। हार्लिन की एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही फेमस लाइन है, आप सभी से शेयर करती हूँ, डोंट जस्ट लिव, एड वैल्यू टू द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में हमारा मकसद सिर्फ उसे रहना नहीं होता, बल्कि हमारा मकसद अपनी ज़िंदगी में कुछ रंग, कुछ नई चीज़ों का इजाफा करना भी होता है। जी तो लिसनर्स, कैसी लगी आपको ये आज की हमारी मोटिवेशनल सी ग्रो हार्लिन की स्टोरी? पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे काफ़ी एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिला, सुनने को मिला। तो लिसनर्स, आपका क्या कहना है इस बारे में? 01157100971, जल्दी से इस नंबर पर जाइए और मुझसे अपने ख्यालात का इजहार करिए कि आपको आज की हमारी इस खूबसूरत सी, प्यारी सी दीवा की स्टोरी कैसी लगी, और ऐसी मजीद कौन सी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप हमसे सुनना चाहते हैं, तो वो भी आप हमसे बताइए।

देखो लिसनर्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बात हमने की कि ग्रो हॉलैंड की स्टोरी से जो मुझे चीज़ पर्सनली सीखने को मिली कि हमें अपने माहौल का ख्याल रखना चाहिए, अपने असाजात को संभाल के रखना चाहिए। जैसे कि हमारे असाजात में हमारा इन्वायरमेंट है, ये तमाम जो चीज़ें हैं, अगर हम इसको एक एज अ इंसान, एज अ पर्सन पर्सनली देखें तो हमें अपने खुद के असाजात को भी संभाल कर रखना चाहिए। अब यहाँ से मेरा इशारा उन तमाम तर लोगों की जानिब है जो लोग फजूल खर्ची करते हैं, यानी कि अपने तमाम तर पैसों को फजूल चीज़ों में, फजूल कामों में उड़ा देते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि इंसान को कफायत चारी करनी चाहिए या फिर बिल्कुल ही अपने पैसों को यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा जिस पॉइंट ऑफ व्यू ये कह रहा है कि हमें चाहिए कि हमारे पास जो भी असाजात हैं, चाहे वो हमारे पर्सनल ही क्यों ना हो, उनका भी उसी तरह से इस्तेमाल करें कि वो ज़ाया ना हो बल्कि हमारे किसी काम आए, क्योंकि जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद होती है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, और अगर हम इसी तरह से फजूल चीज़ों में फजूल खर्ची करना शुरू कर दें तो वो हमारे असाजात भी कम पड़ जाएंगे।

साथ साथ लिसनर्स कोशिश किया करें कि आप हर दिन, जैसे कि कोई भी एक नया दिन स्टार्ट होता है तो अपने दिन के कुछ गोल सेट कर लिया करें कि आज के दिन मैंने ये एक काम करना है, और एंड ऑफ द डे आप अपने आप को खुद एनालाइज किया करें कि क्या वाकई ही मैंने वो काम किया है या नहीं किया। क्योंकि कोई दूसरा आपका मुहासबा करे तो इंसान को वो क्रिटिसिज्म लगता है, इंसान को क्रिटिक्स लगता है, लेकिन जब आप खुद से खुद का मुहासबा करेंगे, आप चीज़ों को सही गलत में फ़र्क जानकर देखेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं, इनको किस तब्दीली की, किस बदलाव की ज़रूरत है।

तो ऐसा जहाँ बात हो रही है कामकाज के कामों के साथ साथ, जैसा कि मैंने शो के स्टार्ट में भी आज बताया कि कामों के साथ साथ इंसान की ज़िंदगी में थोड़ी इन्जॉयमेंट भी होनी चाहिए। और इन्जॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप गैदरिंग में जाएं या फिर शॉपिंग करें या फिर एक्सपेंसिव कहाँ की हैप्पीनेस हासिल करें, बल्कि हैप्पीनेस के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसा कि फॉर मी हैप्पीनेस इज मीटिंग माई फ्रेंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। होता है ना, आप सभी की लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग एग्जिस्ट करते होंगे, मौजूद होंगे कि जिनसे मिलकर आपको लाइफ अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, चीज़ें खुद ब खुद सुलझ जाती हैं और तमाम तो कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाती हैं, और आप जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड करते हो वो टाइम आपका जल्दी गुजर जाता है। ठीक कुछ इसी तरह से सभी के कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त ज़रूर होते हैं। ऐसे ही आज जब मैं अपनी फ्रेंड से आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मिली, क्योंकि बीच में काफ़ी दिनों का गैप था जिसके चलते हम नहीं मिल सके, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड स्टिल काफ़ी देर साथ रहने के बाद भी मेरा दिल कर रहा था कि अभी हम थोड़ा टाइम और साथ में स्पेंड करें, पर जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लाइफ इज़ वेरी बिजी, काम काज करने होते हैं। सो जैसा कि सुबह सुबह मुझे यहाँ आना था और शो करना था, स्टूडियो पहुँचना था टाइम पर, सो ज़्यादा गपशप नहीं हो सकी। लेकिन स्टिल मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जब भी अपने दोस्त से मिलती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोगों से मिला जुला करें, कुछ ऐसे लोगों से कि जिनकी कंपनी आपको वाकई अच्छी लगे, ना कि उन लोगों से जो कि बस बनावटी हों, ऊपर ऊपर से कहते हों कि वो आपके दोस्त हैं लेकिन दिली तौर पर वो आपको अपना दोस्त ना मानते हैं।

इसी को चलते चलते मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया, मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अपने लिसनर से पूछ लेती हूँ कि ऐसी क्या एक्टिविटी है, ऐसी क्या चीज़ है जो आप जब करते हो तो आपको इंस्टेंटली फील होता है कि यू फील हैप्पी। क्योंकि बाज़ुकात लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एक्सपेंसिव भी नहीं हो, जो कि डिफ़िकल्ट भी नहीं हो, बट स्टिल जब आप वो करते हो तो आप अच्छा फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो। फॉर मी इज़ मीटिंग माई फ्रेंड। एंड आपके लिए क्या है आप वो भी मुझसे बता सकते हो, आपने किस तरह से बताना है। 0115710097 इस नंबर के जरिए से आप मुझसे शेयर कर सकते हो। जी तो लिसनर्स, इसी के साथ ही हमारे शो का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का शो अच्छा लगा होगा। पर्सनली मुझे आप सबके साथ गपशप करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे एक अपनाइयत का एहसास भी होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ऐसा ही महसूस होता होगा। जी तो लिसनर्स, शो का वक्त तो खत्म हुआ जा रहा है लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है। सो इस दिन को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाइए, यादगार बनाइए। आप किस तरह से बनाएंगे, मज़ेदार सी जो आज की मैंने रेसिपीज आपसे शेयर की हैं इनको ज़रूर लंच में ट्राई करिएगा और साथ ही साथ मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। इसके साथ ही जो हमारा आज का कोट ऑफ द डे है उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जी तो लिसनर्स, अगर आज आप हमारे आज के कोट ऑफ द डे पर फोकस करें तो उसमें भी आपके लिए एक बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ है। सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का शो अच्छा लगा। इसी के साथ मुझे अपनी होस्ट ज़ैनब फातिमा को दे इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप रेडियो फजा 97.1 FM को ट्यून करते रहिए।

तो लिसनर्स अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी होस्ट ज़ैनब फातिमा को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और जाते जाते ये खूबसूरत सा ट्रैक इंजॉय करिए।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-079-32।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंगम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
16: और परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं, वही प्लान आपको करेगा फीचर, तो देर किस बात की, तो देर किस बात की, आज ही व्हाट्सएप, आज ही वही प्लान के साथ रजिस्टर्ड हो, आज ही वी प्लान के साथ रजिस्टर्ड हों और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप 0339-339-9991 0339-339-9919। वी प्लान, पाकिस्तान का पहला एडवांस इवेंट मार्केट प्लेस, जहां कस्टमर वेंडर को ढूंढता है।

तो था तब। जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, मेरा आपका साथ रहेगा। ठीक हो, ठीक 2 बजे तक सुन प्रोग्राम। एक छोटी मुझे बेकार हो चुकी थी, उसके बाद हम आपको फिर से मिल चुके हैं। प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन, मेरी और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिलकर एंटरटेनमेंट। बट हमेशा की तरह प्रोग्राम में कोई पैगाम शामिल करवाना चाहे, टॉपिक को रखवाना चाहे, सब रखवा सकते हैं। किसी पैर को कोई ट्रैक डेडिकेट करना चाहे सब वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई ट्रैक अपने आप को डेडिकेट करना चाहे सब वो भी कर सकते हैं। नंबर बड़ा ही प्यारा है, जिन नए लोगों ने आज रभी फजन 97.1 एफएम को ट्यून किया है प्लस चूज़ किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का। नंबर नोट कीजिएगा 01157100971। इस खूबसूरत नंबर बुक कीजिएगा, सेफ और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा आप मुझे गूगल पर सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेनी हो किसी भी प्रोग्राम की, कौन सा आरजे कौन सा प्रोग्राम किस टाइम पर करता है, सो आपको मिल जाएगी।

इसके अलावा आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं radiofaza.co.uk, और कोई इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाए प्रोग्राम में साथ देना चाहें तो दे सकते हैं, कुछ ट्रैक शामिल करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। मेरे पास एक बड़ी ही प्यार से ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, मैं उसको प्ले करूँगी, लेकिन अभी नहीं, हमारा सेगमेंट होगा अगला, बट अभी तक के लिए प्रोग्राम में अच्छी अच्छी बातें भी शामिल करनी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपका मूड अच्छे से अच्छा हो। बताएगा कि वीकेंड कैसा गुजरा, क्या हाल चाल, घर बैठी होती मुझे सुन रही है, बताएगा कि मुझे क्या करते हुए सुन रही है, अगर कुकिंग करते हुए समझ नहीं आ रही कि खाने में क्या बनाया जाए, सो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको लाजमी बताऊँगी, बल्कि ज़रूर बताऊँगी।

एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ बात कर रहे थे कि अगर आप ऑफिस ऑफिस गए और ऑफिस जाते साथ थोड़ा सा मूड खराब हो गया तो घबराने कोई बात नहीं, प्रोग्राम में आपके लिए मजे मजे के ट्रैक शामिल किए जाते हैं ताकि आपका मूड अच्छा किया जाए। घर बैठे वाली हमें सुन रही है, बताइएगा कि मैं आपकी कुकिंग में क्या हेल्प कर सकती हूँ, कोई रेसिपी मुझसे पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकती हैं। जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं, बी सेफ बी केयरफुल, आराम से ड्राइव कीजिएगा। और ड्राइव करते हुए कुछ गाने भी सुनने का बड़ा ही मज़ा आता है, अपना ही मज़ा है। सो अभी मैं प्रोग्राम में उन लोगों के लिए ट्रैक शामिल करूँगी जो इस टाइम ड्राइव कर रहे हैं।

प्रोग्राम शामिल करेंगे बिलाल सिद्ध की आवाज़ को। उम्मीद करूँगी आपको बिलाल सिद्ध की आवाज़ पसंद आएगी, मुझे भी बिलाल सिद्ध की आवाज़ बहुत पसंद है। सो आइए शामिल कर देते हैं आप प्रोग्राम में इसकी आवाज़ भी, इनकी आवाज़ भी। एक तेरी हैर मांग दी। सो आइए सुनते इस खूबसूरत से मैशअप को, मिलते हैं इसके बारे में, तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़े हैं फजा के साथ ना टूटे दिल की विद सलूराज। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक हो ठीक 2 बजे तक।

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।
4: You are playing. We are playing.
5: Fazan 97.1 FM.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, फिर आपका साथ रहेगा। ठीक हो ठीक, दो बजे तक सुबह प्रोग्राम एक छोटा सा ट्रैक और शामिल करते हैं, एक छोटी सी फरमाइश हमारे पास मौजूद है उसको प्रोग्राम में शामिल कर देते हैं, फिर उसके बाद आपसे चाहेंगे इजाज़त। लेकिन उससे पहले कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल किया जाएगा, उसको आपने सुनना है और बताना है कि आपको वो कैसा लगा।

शामिल करने प्रोग्राम में करण ओजला की आवाज को। करण ओजला की आवाज को कीजिएगा जो है इसके बाद जब मिलेंगे आपसे, जाएंगे आपसे इजाजत रखने के लिए। कभी कहीं नहीं जाना, ट्यून कर रखना है फजा 97.1 FM को एंड टैप को। आवाज आप सुन रहे हैं सलूराज की, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज। मेरा आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक।

0: 속상 게라.
1: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजल 97.1 एफएम के राज स्टूडियो से। प्रोग्राम में करनौजल की आवाज़ को शामिल किया था, उसी को लेकर आगे चलेंगे। अभी के लिए आपको मुझे देनी होगी इजाज़त, क्योंकि टाइम हो जाता है ख़त्म। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपने दिल दिलों का भी ख्याल रखिएगा। मिलेंगे कल सेम टाइम पे सेम प्लेटफॉर्म पे। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करे।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, 97.1
7: ਫਜ਼ਾ 97.1

0: Hit music.
1: Back to back.
2: तू है पहले।
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
4: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
5: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
6: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
5: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
6: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
6: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
4: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
8: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
9: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
10: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
11: अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। रेडियो फजा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। याद रखें, अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से खुद फिक्रमंद हो, उन्हें असाज़ा के रहमो करम पे कभी भी ना छोड़ें। जो तरबियत आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आइए एक प्लेलिस्ट की तरफ चलते हैं। नूर जहां

सोच में तू खोई हुई, झूठ तू ना बोल सके सच कभी छुपे ना, तू कल रात रोई भी थी, तू तो ठीक से सोई भी नहीं, तेरे रश्म मोतियों से कम नहीं, तू अपनी कीमत मुझसे पूछ तो सही, पूछ तो सही।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: साथ खुशी को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता। सो उससे पहले एंड ऑफ स्टोरी, फिनिश।
1: हर प्रेम कहानी उस दिन शुरू होती है जब दो लोग मिलते हैं, और खत्म तब होती है जब वो बिछड़ते हैं।
2: अस्सलामुअलैकुम सामीन रेडियो फ़ज़ा, अभी हम बात करेंगे उन रोशन सितारों की जो कल का आसमान रोशन करेंगे। जी हाँ, बात हो रही है तलबा की। प्यारे तलबा, आप सिर्फ किताबों के कैदी नहीं बल्कि ख्वाबों के मालिक हैं, और आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी। याद रखिए कि वक्त सबसे कीमती चीज़ है। अपने दिन का शेड्यूल बनाएं, खेल पढ़ाई और आराम सबको वक्त दें, सुस्ती और टाल मटोल से बचें। याद रखें, जो आज मेहनत करता है वही कल कामयाब होता है।

समझ कर पढ़े, रटा नहीं, सिर्फ याद करना काफी नहीं, हर सबक को समझने की कोशिश करें। समझ कर पढ़े, रटा नहीं, सिर्फ याद करना काफ़ी नहीं होता, हर सबक को समझने की कोशिश करें। सवाल पूछने से ना घबराएं, मुश्किल लगे तो दोबारा पढ़ें, क्योंकि इल्म वो है जो समझ में आए, ना कि सिर्फ याद हो। एक अच्छा तालिबे इल्म वही होता है जो अपने असातिज़ा की इज्जत करे, वालिदैन का अदब करे, दोस्तों के साथ अच्छा बर्ताव करे। याद रखें, अदब इंसान को बुलंद करता है।

आजकल सबसे बड़ा चैलेंज मोबाइल को सिर्फ ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर वक्त ज़ाय ना करें, पढ़ाई को तरजीह दें। याद रखें, वक्त ज़ाय करने वाला ख़ुद को ज़ाय कर देता है। पहले तलबा, आप आज जो बन रहे हैं वही कल इस मुल्क का चेहरा होगा। अपने ख्वाबों को सच करने के लिए मेहनत, सब्र और ईमान को अपना हथियार बनाएं।

आप में से बहुत से तलबा ये सोचते हैं कि मैं कामयाब कैसे बनूं, मेरे अंदर ख़ास क्या है। तो सुन लें, हर इंसान के अंदर एक ख़ास सलाहियत होती है, बस उसे पहचानने और निखारने की ज़रूरत है। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, रोज़ थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, एक दिन पढ़कर 3 दिन ना छोड़ें, छोटे अहदाफ बनाएं और अपने पूरे पूरा करें। याद रखें, कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है।

अच्छा दोस्त चुनें, दोस्त आपकी ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको आगे बढ़ाएं, बुरी सोहबत से दूर रहें, मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों जैसा बन जाता है।

अपनी गलतियों से सीखें। गलती करना बुरा नहीं, गलती से सीखना जरूरी है। अपनी कमजोरियों को कबूल करें, हर नाकामी को सबक बनाएं। याद रखें, जो गिरता है वो उठ जाता है और वो वही असल में जीतता है। मुताला की आदत डालें, सिर्फ निसाबी किताबें काफ़ी नहीं, अच्छी किताबें पढ़ें, कामयाब लोगों की कहानियां सुनें, उनके किस्से पढ़ें, इल्म का दायरा वसी करें, क्योंकि किताब इंसान की बेहतरीन दोस्त होती है।

अपनी बात कहना सीखे। बहुत से तलबा अच्छे होते हैं मगर बोल नहीं पाते। एतमाद के साथ बात करें, क्लास में सवाल करें, अपनी राय देने से ना घबराएं, क्योंकि जो बोलता है वही पहचाना जाता है। आइए एक प्लेलिस्ट ओपन करते हैं

नजम से गजल बन गई, तू रोजी बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़वी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शाम

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing.
13: Fazan 97.1 FM.
14: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
15: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM.

जनाब कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की तगदों में मशगूल होने के साथ साथ मेरे प्रोग्राम को भी इंजॉय करेंगे और मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तरीका अगर आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे चल के वो क्या है ना कि हम पहले ही बहुत देर कर चुके हैं, अब मज़ीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। वल जना बदने चीज़ को उस्मान खान कहते हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप ड्राइव टाइम, और इस ड्राइव टाइम में मेरा और आपका साथ जो है वो काफ़ी खूबसूरत रहने वाला है और काफ़ी लेंथी रहने वाला है। तो इस साथ को मज़ीद खूबसूरत बनाएंगे आप लोग अपना साथ देकर। करना कुछ यूँ है कि मैं आपको बताऊँगा एक अदद नंबर, उस नंबर को आपने डायल पैड पर सेव करना है। सेव करने के बाद आपने व्हाट्सएप पर जाना है और फिर व्हाट्सएप पर जाकर आपने खूबसूरत सा पैगाम जो है वो लिख कर मुझ तक पहुँचा देना है। हाँ, अलबत्ता ये ख्याल रखिएगा कि पैगाम जो है वो आपके नाम के साथ होना चाहिए ताकि मुझे पढ़ते हुए भी अच्छा लगे और आपको सुनते हुए भी अच्छा लगे। सो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, द नंबर इज 0115-7100-971, 0115-7100-971 पे आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल या चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। कोई भी पसंदीदा गजल, नज़्म, चंद अशआर, कोई कोटेशन, कोई बात, कोई सलाम, कोई दुआ या फिर किसी चाहने वाले के नाम कोई खूबसूरत सा पैगाम लिख कर भेज दीजिएगा। सो हवा के दोष को लहरा था, गुनगुनाता, सनसनाता हुआ आपका पैगाम जैसे मुझ तक पहुँचेगा, सुनते हुए तमाम तर खूबसूरत सी समात होगी, नज़र हो जाएगा। अगर आपके पास रेडियो की ट्रांसमिशन ठीक से नहीं पहुँच पा रही या आपने किसी प्यारे को कोई खूबसूरत सा गीत डेडिकेट करवाना चाहते हैं तो उनसे कहिएगा कि हमें लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू भी सुन सकते हैं। गूगल पर जाकर सर्च करना है radiofaza.co.uk, आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और हमें लाइव सुन लीजिएगा। मर्जी हो तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 एफएम के नाम से, प्ले स्टोर एप स्टोर दोनों जगहों पे अवेलेबल है। ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं तो फजा डैप पर भी आप हमें ट्यून कर सकते हैं। ये खूबसूरत सी आवाज सभी खूबसूरत सी समातों की नजर इस आवाज को इस बार होगी आपसे मुलाकात। डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाए दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।
4: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼,
7: 97.1
8: Get ready to move.
9: It's all about the beats. Wow,
10: FM. Only tune Super Hit Channel.
11: Fizz on 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेडन किंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: ना कोई मंथली फी, ना कोई मिडलमैन और ना ही कोई बुकिंग कमीशन। अब कस्टमर से डील होगी डायरेक्ट कॉल्स के जरिए, तो देर किस बात की। आज ही अपनी सर्विसेज पब्लिश करें, अट्रैक्टिव पैकेजेस बनाइए और अपनी मर्जी की प्राइसिंग सेट करें, क्योंकि जब आपका हुनर बोलता है तो कस्टमर सीधा व्हाट्सएप पर राब्ता करता है। वी प्लान प्लेटफॉर्म पर कस्टमर्स रोजाना अपनी रिक्वायरमेंट्स पोस्ट करते हैं। बस उन हजारों लोगों तक पहुंचिए जो ऑलरेडी आप जैसी सर्विसेज ढूंढ रहे हैं। फॉरेन क्वेश्चन भेजिए और नए प्रोजेक्ट्स जीतिए। फ्री एक्सप्लोरर, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स, सिर्फ लोकल ही नहीं ओवरसीज पाकिस्तानी भी अब आप तक पहुंचेंगे। आपको मिलेगा एक पावरफुल डैशबोर्ड जहां आप प्रोफाइल क्लिक्स, व्हाट्सएप क्लिक्स, कॉल्स और परफॉर्मेंस ट्रैक कर सकते हैं। वी प्लान आपको करेगा फीचर, तो देर किस बात की। आज ही वी प्लान के साथ रजिस्टर्ड हो और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप 03933999991। वी प्लान पाकिस्तान का पहला एडवांस इवेंट मार्केट प्लेस जहां कस्टमर वेंडर ढूंढता है वी प्लान कराची के इवेंट वेंडर्स, रुक जाइए। कराची के इवेंट वेंडर्स रुक जाइए।
9: It's
10: music never sounded better.
11: Fazan 97.1 FM.
10: I love it.

और जना वंस अगेन वेलकम बैक, लौट कर आ चुके हैं वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं। हम ये होस्ट उस्मान खान और फिर से खुश आमदेद सभी सुनते हुए समाज हो, मगर ये खुश आमदेद है आखिरी बार क्योंकि वक्त इजाज़त आन पहुंचा है और जब वक्त इजाज़त आन पहुंचे तो फिर जाहिर है कि इजाज़त ही दी जा सकती है और अब आपसे इजाज़त ही चाहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि वहाँ से प्यार ले लीजिएगा जहाँ पर प्यार बट रहे, और बाखुदा वहाँ पर प्यार दे दीजिएगा जहाँ पर प्यार की ज़रूरत है। ज़िंदगी और सांसों वफा की तो आपसे कल होगी ठीक सेम प्लेटफॉर्म से टाइम पे मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका और मेरा सबका अल्लाह निगेबान।

0: हेलो सुमान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
0: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
0: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
0: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
8: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
7: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
8: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
7: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
8: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
7: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
8: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
7: टेस्ट भी वाइब भी।
9: You are listening 97.1 FM.
10: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
11: You are playing. We are playing Fuzza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-210-7932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
9: भाई मुबारक तो हो लासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: लासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर Nottingham ऑफ-स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। लासा ट्यूशन सेंटर 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM.

0: वीजा हो गया जी।
1: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
0: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
1: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
0: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि वो हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
1: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
0: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
1: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
0: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
2: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: जब हाथ से हाथ मिलता गया तो हाथों की जंजीर बनी।
1: जो ख्वाब किसी ने देखा था उस ख्वाब को अब ताबीर मिली।
2: ताबीर जो हमने पाई है वो सबके दिल को छू लेगी।
0: बस देखते जाएं दुनिया में सिर्फ एक आवाज ही गूंजेगी।
3: फजा 97.1 FM।
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station
6: that plays
7: foot tapping music.
8: Faza 97.1 FM.
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: द रेडियो दैट कीप्स यू मूविंग।
6: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼, ਦਿਲਾਨੀ ਆਵਾਜ਼
7: 97.1।
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station that plays foot tapping music.
7: 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ।

0: टेंशन है, एसप्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एसप्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-0792।
2: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
3: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
4: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटरपीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
5: You're listening to Radio Faza 97.1 FM. Enjoy songs from legendary singer Kishore only in Dedication Hour.

मोटे लाला शौकीन झोल मोल झोल मोटे लाला शौकीन गोंद में छुपाए हैं चिरागे अलादीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन तीन को हमेशा करते आए साढ़े तीन जरा नाप जरा तोल इसे लूट उसे दीन।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling

0: Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level maths, physics, chemistry and biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
1: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
2: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
1: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
2: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
1: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
2: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
1: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
2: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
1: टेस्ट भी वाइब भी।
3: You're listening to Radio Fazza 97.1 FM. Enjoy soulful songs of Rafi only on Dedication Hour.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

मेहनत हो, लिखूं तेरी सदाएं, पढ़ लूं सारी दुआएं, फिर भी तू राज ना आए, हम तेरे खास सताए, माना हम मर ना पाए, जी के भी कर ना पाए, तेरी मोहब्बत की जो कीमत थी वो

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
9: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
9: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच Sinnentondale NG24LG में है।
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
9: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
10: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर, 0796804644 या 0115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
11: You are listening 97.1 FM.
12: You are playing. We are playing. Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
11: You are listening 97.1 FM.